0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं।

0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही बोलत आहोत आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून। सकाळचे 6:05 आणि 22 सेकंद झालेत। ऐकूया आजचा सुविचार। दयापूर्ण कृत्य अविरत करत रहा, त्यायोगे तुम्ही अमरत्व प्राप्त करू शकाल। अनुकंपा आणि दानधर्म यांनीच मनुष्यास पूर्णत्वाचा लाभ होतो असं भगवान गौतम बुद्धांनी म्हटलंय। आजचा सुविचार आत्ताच आपण ऐकला। आता प्रसारित करणार आहोत मंगल प्रभात हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम।

0: सतारीचे बोल असोत
1: की मंजुळ बासरी,
0: शततारांची संतूर असो
1: की मंगल सनई,
0: लावण्यमयी लावणी असो की भजनी ठेका, आकाशवाणी अवश्य ऐका। आकाशवाणी आपल्याबरोबर प्रत्येक क्षणी।
1: आकाशवाणी आप

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: अभी प्रमोशन की पार्टी कब दे रहे हो?
2: अरे जब तुम कहो तब, लेकिन एक शर्त पर, पार्टी होगी तुम्हारे घर पर.
1: क्यों?
2: तेरे डाइनिंग टेबल से उठने का मन ही नहीं करता. क्या लुक, क्या कंफर्ट, क्या डिजाइन और क्या क्वालिटी है यार. कहाँ से लिया?
3: प्लैनेट फर्नीचर से. प्लैनेट का सबसे बड़ा शोरूम है कोल्हापुर में. बेस्ट क्वालिटी, लॉट्स ऑफ वैरायटी और ब्रांड की गारंटी. प्लैनेट फर्नीचर, टोप संभापुर, कोल्हापुर. कॉन्टैक्ट 9689911240.

0: Paul Usluya.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानव

0: मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अपने क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून

0: स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीति का निश्चित

0: अलका यांनी गाणी सहकाऱ्यांनी गायलेली, प्रसून जोशी यांची शब्दरचना स्वरबद्ध केली होती जतीन ललित यांनी हम तुम या चित्रपटासाठी.
1: निर्मा से सारे दाग चले जाएंगे और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा. सब दाग चले गए. सुपर निर्मा मैं सुपरमैन.
2: सचिन
1: मम्मी
2: सुपर निर्मा में है सचमुच अपनापन.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: श्रोते हो, आज दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळाच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत पोटाचे आणि पचन संस्थेचे आजार आणि घरगुती उपाययोजना. याविषयी डॉक्टर वैशाली तवरे यांच्याशी क्लीना पांडे यांनी साधलेला संवाद, आजची रेसिपी या सदरात सातू सरबत आणि छाया भारसवाडकर यांची कथा टाईम आऊट, तेव्हा नक्की ऐका आज दुपारी वनिता मंडळ कार्यक्रम. हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही तो सहक्षेपित करू.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक

0: लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम।

लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या।

0: सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

0: यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
1: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
1: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
2: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
3: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जौबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जौबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जौबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो।

0: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली।
2: आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली।
4: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
5: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
3: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
4: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
3: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
4: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
6: ना छोड़।

0: No, not your no.
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गई।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: NCERT यांचा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण ऐकला आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून।

0: आम्ही आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून बोलत आहोत. सकाळचे 11 वाजतात. आता हिंदीतून बातमीपत्र आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी. गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है.
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है. ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी.
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्ला

0: देशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोते हो, आपण ट्यून केलंय आकाशवाणीचं रत्नागिरी केंद्र 262.47 मीटर्स अर्थात 1143 किलो हर्ट्स या मध्यम लहरी वाहिनीवर, तसंच 101.5 मेगा हर्ट्स या FM वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR लाईव्ह मोबाईल ॲपवर। सकाळचे 11:05 आणि 33 सेकंद झालेत। आता प्रसारित करणार आहोत कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल।

0: कुमार सानू आणि कविता कृष्णमूर्ती यांच्या युगुलस्वरातलं गीत आत्ताच आपण ऐकलं. संगीतकार होते जतीन ललित.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: तुम्हालाही तुमच्या करिअरची योग्य वाट निवडायची असेल तर नक्की ऐका करिअर मंत्रा हा कार्यक्रम दर बुधवारी सकाळी 8:40 आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून आणि न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह मोबाईल ॲपवरून जगात सर्वत्र.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ

0: खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मध्यम लहरी 537 अंश सहा मीटर तसच 558 किलोहर्ट्स वर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी, तसच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आपण ऐकत आहात। दुपारचे 1:05 होत आहेत। प्रसारित करीत आहोत चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीतबहार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है।

0: नहीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर

0: में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबाली क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है।

0: सीमा तमिलनाडु पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मध्यम लहरी 537.6 मीटर्स तसंच 558 किलोहर्ट्स वर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी श्रोतेहो आपण ऐकत आहात। दुपारचे 2:30 वाजलेत। प्रसारित करीत आहोत नाद ब्रह्मांतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। या कार्यक्रमात आज आपण ऐकणार आहात पंडित अवनिंद्र शेवलीकर यांचं सतारवादन, राग शुद्ध सारंग। विलंबित गत आणि द्रुतगत 3 तालात निबद्ध आहेत। त्यांना तबला साथ केली आहे संदेश पोपटकर यांनी। ऐकूया पंडित अवनिंद्र शेवलीकर यांचं सतारवादन, राग शुद्ध सारंग।

0: ऐकत रहा मध्यम लहरी 537.6 मीटर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर अस्मिता वाहिनी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वे

0: उस पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी, तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आपण ऐकत आहात। यानंतर ठीक 3 वाजता आपण ऐकू शकाल प्रादेशिक बातम्या।

0: बद्रीनाथ की दुल्हनिया या चित्रपटातलं अरिजित सिंग यांनी गायलेलं गीत आपण ऐकलं. कुमार यांची ही गीतरचना होती, संगीत होतं अमान मलिक यांचं.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.

0: आताच आपण ऐकलात युवा मित्रांसाठी कार्यक्रम युववाणी. ही आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राची निर्मिती होती. आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी 537.6 मीटर्स अर्थात 558 किलोहर्ट्सवर. श्रोते हो, आमचे कार्यक्रम AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता. थोड्याच वेळात आपण ऐकणार आहोत मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीतबहार. तत्पूर्वी काही संदेश.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6 वाजतात. थोड्याच वेळात ऐकूया हिंदी बातम्या. 6:05 ऐकूया इंग्रजी बातम्या. दोन्ही बातम्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.

0: में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन

के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार

0: और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान

0: सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण

0: और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज दर्ज हुई बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management, leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept, and instead of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस